0: ऐसे बचपन से ही एक लड़के को कैसे कार देते हैं कि खेलो इसके साथ, तो लड़कियों को क्या देते हैं, डॉल। क्या अच्छा लगता है स्पीड। तो मतलब ये सोच है हमारी समाज की कि लड़कियां कार से नहीं खेल सकती। क्यों, आप बचपन से ही कार दो ना उनको, फिर उनको आदत लगेगी, फिर उनको अच्छा लगेगा। सो गाड़ियों का शौक तो है, मतलब बचपन से ही है। एंड आई वॉन्ट टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप कि लड़कियां कार नहीं चला सकती। मेरा नाम दिव्या दीक्षित है। सो मैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स। और पहले मैं जॉब करती थी इन्फोसिस में, उसके बाद फिर मुझे थॉट्स आते थे कि मैं मतलब यही करने के लिए पैदा हुई है वगैरह वगैरह। पापा ड्राइविंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर थे, तो फिर पापा ने मुझे सिखाया, कार सिखाई। जितना मेरे पापा ने मेरे पे विश्वास रखा था कि हाँ ये कर लेगी, तो फिर ऐसे ऐसी कोई भी चीज नहीं थी कि हमें मम्मी पापा ने रोका हो। उनका ऐसे मानना था कि तुमको सब कुछ आना चाहिए। इतना अगर हर लड़की को अगर घर से इतना सपोर्ट मिल जाए ना, तो फिर इंडिया विल बी डिफरेंट। वी लिव इन अ मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी। उनको बचपन से ही ऐसे सिखाया जाता है ना कि जल्दी घर पे आओ, ये इससे मत खेलो, उससे मत खेलो, या फिर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस। हमें कैसा लगता था कि मतलब इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स।
1: सेकंड गियर फुल क्लच, देखो कितना अच्छा है ना मेरा गियर बॉक्स।
0: जब स्टार्ट किया था तब इतना विश्वास नहीं था खुद पे कि मैं ये कर सकती हूँ या फिर इस लेवल पे जाएगा। लेकिन लोगों का ट्रस्ट नहीं था कि एक लड़की सिखा सकती है।
1: अभी हमें फिर से राइट जाना है। ओके, स्लाइटली ओके।
0: अभी भी ऐसा है ही ना कि लड़कियों को मतलब गाड़ी चलाने में ही मतलब ट्रस्ट नहीं किया जाता। तो सिखाने में मतलब वो वहां तक हमें पहुंचना है, बहुत दूर है। अगर मैं किसी एक लड़की को अगर मैं एक सुनसान रास्ते पे लेके जाऊँ, तो फिर उनको डर नहीं लगेगा, बिकॉज बीइंग अ गर्ल। लेकिन अगर एक जेंट्स उनको लेके जाए, तो फिर मतलब उसका मीनिंग भी अलग है, उनको डर लगेगा फिर कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं वगैरह। लेडीज को मतलब लेडीज के साथ ही कंफर्टेबल होता है। बहुत कंफर्टेबल फील होता है अगर एक लेडी ही लेडीज को सिखाएंगे तो। लेकिन वो कंफर्टेबिलिटी मतलब फर्स्ट डे से ही आती है कि एक लड़की है, मैं उनको समझ सकती हूँ, या फिर उनका उनको ऐसे शर्म नहीं आएगी कि मैं उनको ये बताऊंगी कि मुझे इस चीज से डर लगता है तो फिर ये मुझे जज करेगी। नो, आई एम नॉट देयर टू जज। इंडिया में या फिर कहीं भी कि ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर वाला जॉब लेना ही चाहिए। जॉब नहीं है वो, क्योंकि आप कुछ किसी और को इंडिपेंडेंस सिखा रहे हो। ठीक किया, तो फिर उनके चेहरे पे जो स्माइल आती थी 10th day पे, इट्स 10 days कोर्स, सो वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। अभी मोर देन 700 क्लाइंट्स आई हैव टॉट। जो मैंने कमाई है इन 8 सालों में, वो मुझे तो जॉब करके तो कभी भी नहीं मिलती।
2: लाल कलर की साड़ी में
0: इंडियन ट्रैफिक में सीखना बहुत मुश्किल है. मतलब क्लाइंट्स जब बाहर चलाते हैं ना कोई भी कंट्री में, तो उतना पॉपुलेशन नहीं है, उतनी कार्स नहीं है वहाँ पे. और डिसिप्लिन भी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे. डिसिप्लिन क्या ना, डी भी नहीं है. और अगर आप यहाँ पे सीख सकते हो तो फिर मतलब अदर कंट्रीज में जाकर तो चला ही सकते हो. एनीवन कैन ड्राइव, एनीबॉडी कैन ड्राइव. मतलब लेडीज है कि मतलब जैसे कि अभी स्कूल वैन्स भी बहुत सारी लेडीज चलाती है. मतलब कैब ड्राइवर्स भी अभी तो है ना, ऑटो ड्राइवर्स भी आ गए. आपने देखा क्या? जो उन्होंने मुझे टैग लाइन दी है ड्राइविंग क्वीन, वो भी अच्छा लगता है. एंड आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ.
2: That's all from Made Today. We uncovered hidden oil wells in Los Angeles, a green hydrogen project on Mallorca, an AI chauffeur in Estonia, and a trailblazing driving instructor in India. Take care.

0: or new garments a month.
1: I'm a mother as well as a business owner, and I have a need to buy clothes very often because I like my wardrobe to look fresh. My looks have to be different because school drop-off, pickups, work meetings. So I like to dress up accordingly.
0: What Sejal Sachdeva may not think about is where her discarded clothing goes. It ends up in landfills outside the city where it pollutes the environment. Across India, 7.8 million tons of textile waste are generated each year. Just like with other waste, much of it lands in an incinerator. The trend towards fast fashion means more and more clothing designs are copied and produced quickly in large quantities and cheap quality. So textile waste is likely to increase further.
2: The purchasing capacity has comprehensively increased in India. At the same time, the number of time one garment is owned in India or by a consumer has also decreased.
0: One way to reduce the mountain of textile waste would be to recycle it. But once clothes end up in landfill, together with household waste, they become dirty and stained and unsuitable for further processing. Then there's another problem.
2: These garments or these textiles are heavily blended. More than 50% post-consumer textile waste is blended, not made out of any pure one fabric, which is why it is very difficult to recycle, difficult to manage.
0: This textile recovery center in Navi Mumbai is looking to bring change. 200 kgs of old clothes arrive here every day. Special containers have been set up in nearly 150 residential communities, where residents can dispose of their old clothes separately from their household waste. Workers from various local organizations sort the clothes according to quality and material.
3: जो टैग और विदाउट टैग वाला जो टैग वाला रहता है ना वो हम लोग रीयूज में निकालते हैं और विदाउट टैग वाला मतलब जो कपड़ा अच्छा लगता है उसका कलर में कुछ डिफरेंस नहीं है कलर पे अच्छा है ज्यादा रीयूज नहीं हुआ होगा तो हम लोग रीयूज में निकालते हैं और अपसाइकलिंग में जैसे कि डेनिम्स ट्रैक पैंट शर्ट ये सब हम लोग अपसाइकल में निकालते हैं जिससे कुछ तो प्रोडक्ट बन सकते हैं और डाउनसाइकल में जैसे कि ड्रेस रहेगा जिसमें थोड़ा सा दाग लगा हुआ या कुछ तो ऐसे ऑयल दाग ऐसे जो रहता है ना थोड़ा सा फटा हुआ तो हम लोग डाउनसाइकल में निकालते हैं
0: द रिकवरी फैसिलिटी बिगन ऑपरेशंस इन अक्टूबर 2024 गिविंग वर्क टू 80 वुमेन दे आर एम्प्लॉयड बाय अ नॉन प्रॉफिट दैट इज अ पार्टनर इन द प्रोजेक्ट It was the Navi Mumbai Municipal Corporation that set up the recovery center. It remains a key sponsor.
4: कि जो भी कपड़ा वहाँ पे आएगा, वो पूरा उसका circular process होगा, वो linear process नहीं होगा. Circular process की वजह से क्या हो जाएगा? जो आया है वो पूरा use में आ जाएगा, और उससे कुछ economy भी generate हो जाएगी.
0: In the upcycling department, processed textile waste is turned into bags, jewelry. Stationery and jackets. On the other hand, stretchable clothes like leggings and t-shirts are turned into table runners, bags and soft toys.
5: एक भी कपड़ा हम एक चिंदी भी मिस वेस्ट जाने नहीं देते हम छोटे छोटे जो क्लॉथ्स होते हैं उनको एक पोटली में भर के उसके बहुत सारी चीजें बनाते हैं तो हम धागे से लेकर बड़े से बड़ा कपड़ा हम पूरा यहाँ पर यूज करते हैं यहाँ यूज एंड थ्रो वाली चीज कोई सी भी नहीं है
0: द रिकवरी सेंटर इज अ सक्सेस स्टोरी फॉर द सिटी लास्ट ईयर अलोन 45 टन्स ऑफ ओल्ड क्लोथ्स वर अपसाइकल्ड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स द रिकवरी सेंटर कांट येट प्रोसेस ऑल टेक्सटाइल वेस्ट लो क्वालिटी फैब्रिक्स फ्रॉम द फास्ट फैशन इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर आर अ प्रॉब्लम Waste management experts believe the textile industry itself should be held accountable. This is known as Extended Producer Responsibility or EPR. India already has laws governing EPR for some types of waste, but not yet for textiles. An EPR policy could also require manufacturers to take back clothes and implement recycling schemes. Sejal Sachdeva doesn't yet have a container in her neighborhood. But more are due to be added soon.

0: and took quite a bit of development work to ensure that the algorithms were fast enough to optimize these systems, so to speak. In Estonia, Erik Safonov manages Blik's business. One of his potential customers is the founder of a cleaning company in Tallinn.
1: It's cool that I can do my work during the ride.
0: Vlad Belopolsky plans to use self-driving cars to transport freelance cleaning staff to and from his clients' homes. The goal is to eliminate the use of conventional cars.
1: Blik gives us an opportunity to scale without scaling our assets, and also it helps us to bring equality for the cleaners. Cleaners don't need to have a car.
0: In addition to business customers, it could also be of interest to families, Blik says.
2: For example, children to the school, wife to the to work, so they can use like one car for that reason, and that car can always move to back to the garage, for example.
0: But Blik cars are not yet allowed to drive everywhere without a person in the vehicle. The startup expects to receive approval for this in a few weeks, and Blik says talks are underway to put its vehicles on the road in Germany too.
3: Who are the safer drivers, men or women? The statistics may surprise you. Men are more likely to speed and drive drunk, and are more likely to cause serious crashes. In many countries, women drive just as much as men. But in India, fewer women get behind the wheel. We meet one instructor who's driving change.
4: से बचपन से ही एक लड़के को कैसे कार देते हैं कि खेलो इसके साथ तो लड़कियों को क्या देते हैं डॉल क्या अच्छा लगता है स्पीड तो मतलब ये सोच है हमारी समाज की कि लड़कियां कार से नहीं खेल सकती क्यों आप बचपन से ही कार दो ना उनको फिर उनको आदत लगेगी फिर उनको अच्छा लगेगा सो गाड़ियों का शौक तो है मतलब बचपन से ही है एंड आई वांट टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप कि लड़कियां कार नहीं चला सकती मेरा नाम दिव्या दीक्षित है सो मैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स और पहले मैं जॉब करती थी इन्फोसिस में उसके बाद फिर मुझे थॉट्स आते थे कि मैं मतलब यही करने के लिए पैदा हुई है वगैरह वगैरह पापा ड्राइविंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर थे तो फिर पापा ने मुझे सिखाया कार सिखाई जितना मेरे पापा ने मेरे पे विश्वास रखा था कि हाँ ये कर लेगी तो फिर ऐसे ऐसी कोई भी चीज नहीं थी कि हमें मम्मी पापा ने रोका हो उनका ऐसे मानना था कि तुमको सब कुछ आना चाहिए इतना अगर हर लड़की को अगर घर से इतना सपोर्ट मिल जाए ना तो फिर इंडिया विल बी डिफरेंट We live in a main dominating society. उनको बचपन से ही ऐसे सिखाया जाता है ना कि जल्दी घर पे आओ ये इससे मत खेलो उससे मत खेलो या फिर बहुत सारे restrictions. तो हमें कैसा लगता था कि मतलब inferiority complex.
5: Second gear, full clutch. देखो कितना अच्छा है ना मेरा gearbox.
4: जब स्टार्ट किया था तब इतना विश्वास नहीं था खुद पे कि मैं ये कर सकती हूँ या फिर इस लेवल पे जाएगा लेकिन लोगों का ट्रस्ट नहीं था कि एक लड़की सिखा सकती है
5: अभी हमें फिर से राइट जाना है ओके स्लाइटली ओके
4: अभी भी ऐसा है ही ना कि लड़कियों को मतलब गाड़ी चलाने में ही मतलब ट्रस्ट नहीं किया जाता तो सिखाने में मतलब वो वहाँ तक हमें पहुँचना है बहुत दूर है अगर मैं किसी एक लड़की को अगर मैं एक सुनसान रास्ते पे लेके जाऊँ तो फिर उनको डर नहीं लगेगा बिकॉज बीइंग अ गर्ल. लेकिन अगर एक जेंट्स उनको लेके जाए तो फिर मतलब उसका मीनिंग भी अलग है, उनको डर लगेगा फिर कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं वगैरह. लेडीज को मतलब लेडीज के साथ ही कंफर्टेबल होता है. तो बहुत कंफर्टेबल फील होता है अगर एक लेडी ही लेडीज को सिखाएंगे तो. लेकिन वो कंफर्टेबिलिटी मतलब फर्स्ट डे से ही आती है कि एक लड़की है, मैं उनको समझ सकती हूँ या फिर उनका उनको ऐसे शर्म नहीं आएगी कि मैं उनको ये बताऊंगी कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है तो फिर ये मुझे जज करेगी. नो, आई एम नॉट देयर टू जज. इंडिया में या फिर कहीं भी कि ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर वाला जॉब लेना ही चाहिए. जॉब नहीं है वो, क्योंकि आप कुछ किसी और को इंडिपेंडेंस सिखा रहे हो. ठीक किया तो फिर उनके चेहरे पे जो स्माइल आती थी 10th day पे, इट्स 10 days कोर्स, सो वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे. अभी मोर देन 700 क्लाइंट्स आई हैव टॉट. जो मैंने कमाई है इन 8 सालों में वो मुझे तो जॉब करके तो कभी भी नहीं मिलती. इंडियन ट्रैफिक में सीखना बहुत मुश्किल है. मतलब क्लाइंट्स जब बाहर चलाते हैं ना कोई भी कंट्री में, तो उतना पॉपुलेशन नहीं है, उतनी कार्स नहीं है वहाँ पर. और डिसिप्लिन भी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे. डिसिप्लिन क्या ना, डी भी नहीं है. और अगर आप यहाँ पे सीख सकते हो तो फिर मतलब अदर कंट्रीज में जाकर तो चला ही सकते हो. एनीवन कैन ड्राइव, एनीबॉडी कैन ड्राइव. मतलब लेडीज है कि मतलब जैसे कि अभी स्कूल वैन्स भी बहुत सारी लेडीज चलाती है. मतलब कैब ड्राइवर्स भी अभी तो है ना, ऑटो ड्राइवर्स भी आ गए. आपने देखा क्या? जो उन्होंने मुझे टैग लाइन दी है ड्राइविंग क्वीन, वो भी अच्छा लगता है. एंड आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ.
6: That's all from Made Today. We uncovered hidden oil wells in Los Angeles, a green hydrogen project on Mallorca, an AI chauffeur in Estonia, and a trailblazing driving instructor in India. Take care.
7: Das ist wie Friedhof, wie Grab.
8: Is France abandoning unhoused people? Thousands in Paris are living in makeshift tent camps. NGOs warn of an increasingly critical situation.
9: Avant, il y a 10 ans, sur les maraudes, on croisait presque pas de femmes, on croisait presque pas d'enfants, on croisait presque pas de familles. Maintenant, ça commence vraiment à être monnaie courante.
8: Focus on Europe. Next. Why do we go beyond our limits?
10: For most people, reaching their limit and pushing past it brings a real sense of satisfaction.
8: What motivates us?
11: Squeeze every last bit of performance out of yourself.
8: And what's the point of performance limits?
11: To protect the body from harm.
8: The human high-performance machine. My body, my limits. In 45 minutes. Couldn't be simpler. Watch the latest news while simultaneously learning German with Kurz und Leicht. Check out 3 current news events in subtitled videos. Challenging German words are explained quick and easy, short and sweet.
12: Find us on dw.com, Kurz und Leicht, and social media. Video news for learning German, Kurz und Leicht.
13: A DW journalist has been arrested in Turkey.
14: Media freedom appears under attack.
12: They ask questions, they challenge, they expose. In their search for facts, truth, and transparency. But journalism is under threat from violence, censorship, financial pressure, and an aggressive surge in fake news.
15: Journalism gives us perspective. Understanding the world is something we do together, because together we see.